0: Layan je Bollywood.
1: नहीं राहुल, ये गाना मत गाओ। गाने दीजिए ना, गाओ बेटे, यही गाना गाओ।